0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेस के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, दवा उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेस 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के मुद्दों पर मजबूत सहयोग है। ये यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगी। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भारत की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। आज शाम वे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगी। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा तथा हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श होगा। इसके बाद गृहमंत्री त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पश्चिम बंगाल में विभिन्न रेल परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए शनिवार को कोलकाता पहुंचेंगे। पूर्वी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवाजी माझी ने आकाशवाणी को बताया कि रेल मंत्री मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ नबन्ना सभागार में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: नई दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में कल एक गेस्ट हाउस में आग लगने

0: घटना में 21 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। उसने बताया कि इमारत के मालिक लवगेश बजाज को हिरासत में ले लिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि घटना के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाली प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। भारत ने सैफ फुटबॉल महिला चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 5 बार के विजेता भारत का फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से मुकाबला होगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: प्रसार भारतीच्या वेव्ज OTT प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज ऑन AIR ॲप सहित 558 किलोहर्ट्झवर आकाशवाणी मुंबईची ही आहे अस्मिता वाहिनी। 6:05 झाली आहेत।
2: 229° अर्थात 1305 किलोहर्ट्झवर आकाशवाणीचं हे परभणी केंद्र आहे। नमस्कार परभणी, प्रसारित करीत आहोत रामप्रहरी कोऱ्या करकरीत मनावर सुविचारांचं शिंपण विचारशलाका या कार्यक्रमातून। आज यात देवाची या द्वारी याविषयी संजय पिंपळगावकर यांचे विचार ऐकूयात।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका और भारत बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कुछ सप्ताह दूर। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज से अहमदाबाद में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी

0: रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, औषधि उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। डेल्सी रोड्रिगेज 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। हमारी संवाददाता की ये रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है। वह इससे पहले 2015 में विदेश मंत्री और 2019, 2023, 2024 तथा 2025 में उपराष्ट्रपति के रूप में भारत का दौरा कर चुकी हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल भारत के ऊर्जा, औषधि और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी कई प्रतिष्ठानों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं को समझना तथा सहयोग की नई संभावनाओं की तलाश करना है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर आधारित सौहार्दपूर्ण संबंध है। मंत्रालय के अनुसार इस यात्रा से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध और अधिक मजबूत होंगे तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को नई गति मिलेगी। अनुपम मिश्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से इशिका शाह।
0: ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री येवेट कूपर 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी ये यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलोंग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
2: बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उत्तर पूर्वी परिषद सदस्य और केंद्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। अनुमेदिता और ऋषो की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इस सम्मेलन के दौरान काशी के विश्व प्रसिद्ध जीआई टैग प्राप्त और ओडीओपी यानी एक जिला एक उत्पाद की एक विशेष प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। प्रदर्शनी में 6 कारीगर, वाराणसी की समृद्ध शिल्प परंपराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 6 अनूठे उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। ये उत्पाद काशी की सदियों पुरानी कला, शिल्प कौशल और सांस्कृतिक विरासत के जीवंत प्रतीक हैं। प्रदर्शनी के माध्यम से विदेशी प्रतिनिधियों को न केवल इन उत्पादों की विशिष्टता से परिचित कराया जाएगा बल्कि स्थानीय कलाकारों और कारीगरों को भी वैश्विक बाजार में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम कारोबार करने में सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
4: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सके। इसके अलावा 2017 में जीएसटी लागू किया गया जिसे अलग अलग कर व्यवस्थाओं की जगह एक सरल कर प्रणाली लागू हुई जिसे कारोबार करना आसान हो गया। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
5: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर के ऊपर किए गए the reforms, देश के

0: इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है, स्टेबिलिटी के लिए। अप्रत्यक्ष कर के रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है, लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
1: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। जेम से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जेम की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुँच प्रदान करता है।
2: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जेम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। एमएसएमई, स्टार्टअप, महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
1: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी, जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। भारत में कारोबार के लिए बेहतर माहौल, मजबूत डिजिटल व्यवस्था और पारदर्शी शासन से व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिल रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसका मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिताओं में योग को शामिल करना है।
4: इस 5 दिवसीय वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका सहित 60 देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी 12 विभिन्न स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। इस चैंपियनशिप के दौरान खिलाड़ी कला त्मक और लयबद्ध योग डिवीजनों के साथ साथ 7 आधिकारिक योग श्रेणियों में हिस्सा लेंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। ये घटना ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में कल रात हुई। घटना की जाँच जारी है। इधर नई दिल्ली के मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में लिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत और अमेरिका लंबे समय से प्रस्तावित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से बेहद करीब हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ये समझौता अगले कुछ सप्ताह में पूरा हो सकता है। रूबियो ने कहा कि हाल ही में भारत यात्रा के दौरान क्वाड देशों के प्रतिनिधियों के साथ इस संबंध में चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि क्वाड देश अब केवल बातचीत तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग सहित कई ठोस परियोजनाओं पर मिलकर काम कर रहे हैं।
5: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं, वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। कोड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। कोड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
3: भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। गोवा के मडगांव में कल भारतीय महिला फुटबॉल टीम 6 साल बाद सैफ महिला चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची। 5 बार के विजेता भारत का फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से सामना होगा। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, कर्नाटक, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तराखंड में भी बारिश की

0: संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी की आशंका है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित मुख्य समाचार

0: की मौत, 11 विदेशियों सहित 21 जिंदा जले, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। घटना के बाद अग्नि सुरक्षा संबंधी व्यापक अभियान चलाने पर सख्ती शीर्षक से हिंदुस्तान ने लिखा है, नियम तोड़ने वाले प्रतिष्ठान सील होंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए अनुग्रह राशि देने की खबर भी अधिकतम समाचार पत्रों में है। अमर उजाला ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के दो गुटों में बंटने की खबर को शीर्षक दिया है, तृणमूल में टूट, 58 बागी विधायकों ने ऋत व्रत को चुना नेता, मिली मान्यता। इसी खबर पर राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, टूट गई टीएमसी, 58 विधायकों ने स्पीकर को सौंपा समर्थन पत्र। अमेरिका द्वारा भारत सहित 50 से अधिक देशों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने के प्रस्ताव पर नवभारत टाइम्स ने बॉक्स में लिखा है, अमेरिका ट्रेड डील पर बातचीत के बीच 12.5% की एक्स्ट्रा ड्यूटी का पेज अमर उजाला ने छापा है। ट्रंप प्रशासन का आरोप, इन देशों ने बंधुआ मजदूरी रोकने के लिए नहीं उठाए कदम, इसलिए लगाया जा रहा है शुल्क, भारत ने जताई कड़ी आपत्ति। वैश्विक तापमान में हो रही वृद्धि पर अमर उजाला ने संपादकीय लेख में संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के हवाले से चिंता व्यक्त करते हुए टिप्पणी की है, जून से अगस्त 2026 के बीच अल नीनो सक्रिय होने की 80% और नवंबर तक बने रहने की आशंका है। मेघालय के चेरापूंजी में सेवन सिस्टर्स और किनरेम वाटरफॉल में लगातार हो रही बारिश की मनमोहक तस्वीर दैनिक भास्कर में है। पौष्टिक आहार के फायदों की याद दिलाते हुए लोक सत्य ने टिप्पणी की है, याददाश्त बढ़ाने में सहायक पौष्टिक आहार।
1: धन्यवाद सर फिरोजी। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज शिलोंग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका और भारत बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कुछ सप्ताह दूर। भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार पत्र प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू होल्ड टॉक्स विद एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला डेल्सी रोड्रिगेज इन न्यू दिल्ली टुडे। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह टू चेयर 73rd प्लीनरी सेशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल इन शिलोंग। U.S. Secretary of State Marco Rubio says United States and India are only weeks away from concluding a long-awaited trade agreement. IMD issues orange alert for heavy rain in Keralam and Mahe today. First World Yogasan Sports Championship to begin today in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi to join the event virtually in the evening. And in football, India advanced to the final of SAF Women's Championship, beating Bhutan 1-0 in Goa. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with the acting president of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi today. Ms. Rodriguez arrived yesterday on a 5-day visit to India. She is accompanied by a delegation comprising the ministers of foreign affairs, economy and finance, science and technology, communication and information and transportation. Ms. Rodriguez had visited India in her earlier capacity as foreign minister in 2015 and as vice president in 2019, 2023, 2024 and 2025. More from our correspondent.
3: The discussions will involve the full spectrum of India-Venezuela relations and explore avenues for further cooperation in areas of energy security, trade and investment, pharmaceuticals, healthcare, transportation and renewable energy. The Venezuelan delegation will also visit several sites connected with energy, pharmaceuticals and auto sectors to gain insights into India's technological and industrial capabilities and to explore opportunities for collaboration. India has been an important partner of Venezuela in the areas of energy and investment. Indian PSUs have made significant investment in Venezuela in the energy sector, and they are keen to explore

तैयार करने और उस पर मौसर अमल दर आमद करने की भी हिदायत दी। मुंबई और नागपुर ज़रई पैदावार मार्केट कमेटियों को अब कौमी तौर पर अहम बाजार करार दिया गया है। मार्केटिंग के वजीर जयकुमार रावल को मुंबई कौमी सतह पर अहम मार्केट का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। नागपुर ज़रई पैदावार मार्केट कमेटी मुल्क की 11 रियासतों से माल वसूल करती है और सालाना 4 लाख मैट्रिक टन माल का कारोबार होता है। इस फैसले से मुंबई और नागपुर के बाजारों की कौमी और बैनुल अक्वामी शनाख्त मजबूत होंगी। विधानसभा इंतखाबात के लिए महायुति के 17 उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त का ऐलान कल मुंबई में महायुति की जानिब से मुनाकिदा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया। कुछ बागी उम्मीदवार पहले ही दस्तबरदार हो चुके हैं। महायुति रहनुमाओं ने कल उस एतमाद का इजहार किया कि बाकी उम्मीदवार आखिरी तारीख से पहले अपनी दरख्वास्तें वापस ले लेंगे। नायब वज़ीर-ए-आला सुनीता पवार के इस्तीफे से खाली होने वाली राज्यसभा की एक सीट के लिए वोटिंग 18 जून को होगी। अगर इस नशिस्त के लिए इलेक्शन लड़ा जाता है तो 18 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। इसके लिए महाराष्ट्र काबीना सेक्रेटरी मेघना तड़ेकर को इलेक्शन अफसर मुकर्रर किया गया है। मराठा रिजर्वेशन के सिलसिले में एक सेल कायम किया जाएगा और रिजर्वेशन से मुतालिक रिकॉर्ड, कुनबी जात सर्टिफिकेट, जात की तस्दीक के सर्टिफिकेट वगैरह की तलाश में शहरियों की मदद के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया जाएगा। मराठा रिजर्वेशन जैली कमेटी के चेयरमैन राधाकृष्ण विखे पाटिल ने कल इस सिलसिले में मुनाकिदा मीटिंग में ये इत्तला दी। काबीना की जैली कमेटी ने जस्टिस शिंदे की कमेटी की आखिरी तारीख 30 जून 2027 तक बढ़ाने का भी फैसला किया है। सर्टिफिकेट्स की तकसीम के लिए छत्रपति संभाजीनगर डिवीजनल कमिश्नर के जरिए तैयार करदा रहनुमा खतूत के मुताबिक वजीर विखे पाटिल ने अगले 3 महीनों में घरों के दौरे, खसूसी कैंपों के इनेकाद और जिला कलेक्टरों को जिम्मेदारी सौंपने जैसी हिदायत भी दी। कांग्रेस के सीनियर लीडर विजय वेडेट्टीवार ने किसानों की कर्ज माफी, शराब पर पाबंदी और महायुति में अंदरूनी तनाजात के मामले पर रियासती हुकूमत पर तनकीद की है। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत 2 लाख रुपए तक के कर्जे माफ कर दे तो भी बड़ा सवाल यह है कि इस रकम से ज्यादा कर्जे वाले किसान बाकी रकम कहाँ से अदा करेंगे। वेडेट्टीवार ने यह भी कहा कि इस कर्ज माफी का ऐलान मार्च से पहले होना चाहिए था। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के रुकने पार्लियामेंट संजय राउत ने भी इस मामले पर हुकूमत पर तनकीद की है। वो कल नासिक में खिताब कर रहे थे। उन्होंने मुतालबा किया कि ये कर्ज माफी किसानों को दी जाए। ये खबरें आकाशवाणी छत्रपति संभाजीनगर से नशर की जा रही हैं। मरकजी काबीना ने 10,000 करोड़ रुपए के जहाज ईंधन कीमत स्टेबिलाइजेशन फंड को मंजूरी दी। मरकजी वजीर इत्तला नशरियात अश्विनी वैष्णव ने कल नई दिल्ली में ये इत्तला दी। उन्होंने कहा कि इस फैसले से हवाबाजी के माहौलियाती निज़ाम पर मुनासिर 77 लाख मुलाजिमतों को तहफ़ मिलेगा। नई दिल्ली के एक रेस्तरां में आग लगने से 21 से ज़ायद अफराद हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। मरने वालों में ज़्यादातर अफ्रीका और वस्ती एशिया के शहरी हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी समेत कई लोगों ने इस सानहे पर गम का इजहार किया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में कल से 2 रोज़ा तालीमी एक्सपो प्रज्ञा वेद 2026 का इनेकाद किया गया है। प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर प्रवीण वक्ते ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ओपन डे के जरिए यूनिवर्सिटी की सलाहियतों को जाहिर किया जाएगा। इस प्रज्ञा वेद के लिए नए थिएटर में 60 स्टॉल लगाए जाएंगे। इस जगह मरकजी कैंपस में 45 शोभाजात के हॉल होंगे, साथ ही धाराशिव जैली कैंपस में 10 शोभाजात होंगे। ये नुमाइश सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने इससे फ़ायदा उठाने की अपील की है। दरियासना एजुकेशन एक्सपो के इनेकाद के हवाले से कल वाइस चांसलर डॉक्टर विजय फुलारी की सदारत में यूनिवर्सिटी के तमाम शोभाजात के सरबराहों के साथ जायजाती इजलास भी मुनाकिद हुआ। धाराशिव के ज़िला कलेक्टर कीर्ति किरण पुजार ने हिदायत दी है कि मुमकिन पानी की किल्लत पर मौसर तरीके से काबू पाने के लिए सरकारी और निजी कुओं, हैंडपम्प्स और रिचार्ज शाफ्ट के इलाके में बड़ी तादाद में जलतारा गढ़े बनाए जाए। वो कल मुमकिना एल नीनो और चारे की किल्लत के पेश नज़र ज़िले में पानी की किल्लत और चारे की दस्तियाबी के ज़िम्न में जायजाती इजलास से खिताब कर रहे थे। उन्होंने आइंदा साल के लिए तफसीली मनसूबाबंदी पेश करते हुए ज़ेर ज़मीन पानी के ज़खीरे को बढ़ाने के लिए इकदाम की ज़रूरत का इजहार भी किया। हिंगोली ज़िले में यकुम जून से खेती बचाओ मुहिम नाफिज की जा रही है।
इस मुहिम

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोते हो, वळूयात आपल्या लखलख चंदेरी या कार्यक्रमाकडे आणि ऐकूयात हे गीत।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: अंश अर्थात 1305 किलो हर्ट्सवर आणि FM बँडच्या 102 मेगाहर्ट्सवर श्रोते हो आपण ऐकत आहात आकाशवाणी परभणी केंद्राचं चान्स प्रसारण।

0: हमद बारी ताला और नाते रसूल अभी आपने सुनी पेश कर रहे थे जनाब अबरार किरतपुरी। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब पेश है प्रोग्राम आज सवेरे।
1: और अब समय आ चुका है इतिहास के पन्नों को पलटने का और जानने का कि आज यानी 4 जून का जो दिन है वो इतिहास में क्यों दर्ज हो गया। और 1903 में आज ही के दिन महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में साप्ताहिक पत्र इंडियन ओपिनियन की शुरुआत की।

0: जिसका उद्देश्य नस्लीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाना था। 1917 में आज ही के दिन संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली बार पुलित्जर प्राइजेस प्रदान किए गए। ये पुरस्कार पत्रकारिता, साहित्य, नाटक और संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए दिए जाते हैं। आज इन्हें दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में गिना जाता है। 1969 में आज ही के दिन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजा गोपालाचारी ने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की घोषणा की। और आज ही के दिन 1994 में भारत ने पृथ्वी मिसाइल का सफल उपयोगकर्ता परीक्षण किया, जो उसके स्वदेशी मिसाइल कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। और श्रोताओं, अब वो याद करेंगे उन महान हस्तियों को जो आज ही के दिन इस दुनिया में आए या इस दुनिया से विदा हुए। आज पुण्यतिथि है सुलभा देश पांडे की। ये बॉलीवुड और रंगमंच अदाकारा थी। रंगमंच कलाकार सुलभा देश पांडे ने कई मराठी और हिंदी फिल्मों तथा टीवी सीरियल में काम किया। इन्होंने मराठी और हिंदी रंगमंच के अलावा मराठी और हिंदी की कई फिल्मों में भी अभिनय किया। इनमें तमन्ना, विरासत, याराना, खून भरी मांग और इंग्लिश विलेज जैसी कई सफल फिल्मों के नाम शामिल है। सुलभा देश पांडे ने भूमिका अरविंद देसाई की अजीब दास्तान, गमन जैसी फिल्मों में भी यादगार भूमिकाएं निभाई। इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है जिसका नाम है शांतता कोर्ट चालुआ है। हम इसका ही एक अंश आपको सुनाने जा रहे हैं।
1: जीवन हास्य है, जीवन दस है, जीवन में अमुक है, जीवन में तमुक है, जीवन
0: और आज ही पुण्यतिथि है अभिमन्यु अनंत की भी। मॉरिशस में हिंदी कथा साहित्य का सम्राट इन्हें माना जाता था। इन्होंने 18 वर्षों से हिंदी का अध्यापन किया और 3 वर्षों तक युवा मंत्रालय में नाट्य कला विभाग में नाट्य प्रशिक्षक रहे। अभिमन्यु अनंत को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें साहित्य अकादमी, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, मैथिली शरण गुप्त सम्मान आदि प्रमुख है। और अब हम याद कर रहे हैं श्रीपति पंडित राधेल बाला सुब्रमण्यम को, जिन्हें आप और हम जानते हैं एसपी बाला सुब्रमण्यम के नाम से भी। इनकी आज जयंती है। ये देश के सुप्रसिद्ध पार्श्व गायकों में से एक हैं। इन्हें बालू के नाम से भी जाना जाता है। एसपी ने अपने 5 दशक लंबे फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक गीत गाए। पार्श्व गायक होने के साथ साथ ये एक अभिनेता, संगीत निर्देशक और फिल्म निर्माता भी थे। एसपी बाला सुब्रमण्यम ने 6 बार सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 25 बार तेलुगु सिनेमा में नंदी पुरस्कार जीता। फिल्म मैंने प्यार किया, साजन और हम आपके हैं कौन जैसी फिल्मों गीतों ने भी इनके सभी के दिलों को छू लिया।

मैडम ने एक दूसरे के लिए मैंने प्यार किया, पत्थर के फूल और रोजा जैसी पॉपुलर फिल्मों के गाने गाए। एस पी बालासुब्रमण्यम को भारत सरकार ने 2011 में पद्म भूषण से नवाजा था।

आज ही जयंती है बॉलीवुड की सुप्रसिद्ध अदाकारा नूतन की भी। नूतन ने बतौर बाल कलाकार फिल्म नल दमयंती से अपने सिने करियर की शुरुआत की। 1955 का साल इनके फिल्मी जीवन में अहम साबित हुआ जब नूतन ने फिल्म सीमा में विद्रोहिणी नायिका के सशक्त किरदार को रुपहले पर्दे पर साकार किया।

0: आप सुन रहे थे प्रोग्राम आज सवेरे मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप कलीम अहमद से खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कायम मुकाम सदर डेल्सी रोड्रिग्ज के साथ बातचीत करेंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज शिलोंग में शुमाल मशरक़ी कौंसिल के 73वें मुकम्मल इजलास की सदारत करेंगे। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अमरीका और भारत के दरमियान तजारती समझौता चंद हफ्ते के अंदर अंदर तय पा जाएगा। भारतीय मौसमियात महकमे ने केरलम और माहे में शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनज़र ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पहली आलमी योगासन स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप आज अहमदाबाद में शुरू हो रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी शाम को वर्चुअल वसीले से इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। और फुटबॉल में गोवा में भूटान को 1-0 से हरा कर भारत ख्वातीन की सैफ चैम्पियनशिप के फाइनल में पहुँच गया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कायम मुकाम सदर डेल्सी रोड्रिग्ज के साथ बातचीत करेंगे। मोहतरमा रोड्रिग्ज भारत के 5 दिन के दौरे पर कल नई दिल्ली पहुंची हैं। उनके हमराह मुख्तलिफ महकमों के वजीरों पर मुश्तमिल एक वफद भी भारत आया है। इसमें उमूर खारजा, मईशत, खजाने, साइंस और टेक्नोलॉजी और ट्रांसपोर्टेशन शामिल हैं। मोहतरमा रोड्रिग्ज इससे पहले 2015 में वज़ीर ख़ारजा की हैसियत से और इसके बाद 2019, 2023, 2024 और 2025 में नायब सदर की हैसियत से भारत के दौरे पर आ चुकी हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज मेघालय के शहर शिलोंग में शुमाल मशरक़ी कौंसिल के 73वें मुकम्मल इजलास की सदारत करेंगे। शुमाल मशरक़ी ख़त्ते के फ़रोग़ से मुतालिक वज़ारत ने कहा है कि इस इजलास में इलाकाई तरक्की के अहम शोबों के लिए तश्कील दी गई आला सतह की CM टास्क फोर्सेज की पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इजलास के दौरान सियाहत, ज़रात, बागबानी, सरमायाकारी के फ़रोग, दूध, अंडों, मछली और गोश्त में खुद किफालत, खेलों के फ़रोग, इकतसादी कॉरिडोर डेवलपमेंट, बुनियादी ढांचा, कनेक्टिविटी और दस्तकारी के बारे में प्रेजेंटेशंस पेश की जाएंगी। उम्मीद है कि इस तबादले ख्याल से मुश्तरका मकासिद के हुसूल के लिए रियासतों और मुतालिका फरीकों के माबैन तालमेल के साथ इकदामात करने में सहूलत होगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। अपने इस दौरे में जनाब अमित शाह पुष्पावंत पैलेस होटल का संग बुनियाद रखे जाने की तकरीब में शिरकत करेंगे। लंकमुरा के

मुकाम पर सरहदी हिफाजती फोर्स BSF की सरहदी चौकी पर जाएंगे और रियासती नीज मरकजी सिक्योरिटी अहदेदारों के आला सतह की मीटिंग करेंगे। रियासती सरकार ने जनाब अमित शाह के दौरे के सिलसिले में आला सतह की इंतजामी और सिक्योरिटी मीटिंग का भी एहतमाम किया है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कानून साजों से कहा है कि अमेरिका और भारत अपने उस तजारती समझौते को हतमी शक्ल देने से महज कुछ हफ्ते दूर हैं जिसका तवील अरसे से इंतज़ार था। खारजी उमूर से मुतालिक हाउस कमेटी के सवालों के जवाब देते हुए कल रात जनाब रूबियो ने बताया कि वाशिंगटन और नई दिल्ली समझौते को मुकम्मल करने के करीब हैं। जनाब रूबियो ने इस बात को कई बार उजागर किया कि भारत बहरुल काहिल खत्ते में भारत अहम स्ट्रेटजिक शराकत दार है। उनका ये बयान दुनिया की दो सबसे बड़ी और सबसे कदीम जमहूरियत के दरमियान मुआशी ताल्लुकात की बढ़ती रफ्तार की जानिब इशारा करता है। जनाब रूबियो ने मजीद कहा कि उनके भारत दौरे के दौरान क्वाड के उनके हम मनसबों से भी तबादला ख्याल हुआ। क्वाड ग्रुप में भारत, अमरीका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर लाओ PDR के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा के साथ कल नई दिल्ली में 10वीं भारत लाओ PDR मुश्तरका कमीशन मीटिंग की मुश्तरका सदारत की। मीटिंग के दौरान फरीकैन ने तजारत और सरमायाकारी, सेहत, तवानाई, डिजिटल कनेक्टिविटी, तरक्याती शराकतदारी, सलाहियत साजी और सकाफत समेत मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली तबादला ख्याल किया। इसके अलावा दोनों फरीकों ने खित्ते में भारत आसियान ताउन और पेशरफ्त को आगे बढ़ाने पर भी बातचीत की। अपनी इफ्तिताही तकरीर में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और लाओ PDR के दरमियान करीबी सकाफती ताल्लुकात हैं जो बुद्धिज्म और रामायण के मुश्तरक विरसे में नज़र आते हैं। जनाब जयशंकर ने कहा कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात सदियों पुराने हैं जो गहरे सकाफती और आवाम से आवाम के रबतों पर मबनी हैं। बरतानिया के वजीर खारजा दौलत मुश्तरका मामलों के वजीर वेट कूपर भारत के अपने दो रोज़ा सरकारी दौरे पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। मोहतरमा कूपर का आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात का प्रोग्राम है। वो आज शाम वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगी। वजारत खारजा ने बताया कि मोहतरमा कूपर का दौरा भारत बरतानिया जामे स्ट्रेटजिक शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करने का मौका फराहम करेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पार्लिमानी हलका दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक वाराणसी एक बार फिर तारीखी बैन अलाक़वामी तकरीब का गवाह बनने जा रहा है। G20 मीटिंगों की कामयाब मेज़बानी के बाद वाराणसी अब आज और कल ब्रिक्स सकाफती ग्रुप की दूसरी मीटिंग की मेज़बानी करेगा। इस मीटिंग में चीन, ब्राज़ील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया समेत 11 मुल्कों के नुमाइंदे हिस्सा लेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। पहली आलमी योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप आज शाम गुजरात के शहर अहमदाबाद में शुरू हो रही है जो खेलों के आलमी मंजरनामे पर एक तारीखी संग मील की हैसियत रखता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी शाम को वर्चुअल वसीले से इस बड़े प्रोग्राम में शामिल होंगे। इस चैंपियनशिप के लिए दुनिया भर से योग के मद्दाह और एथलीट्स अहमदाबाद जमा हुए हैं। नई दिल्ली के मालविया नगर इलाके में वाक़े गेस्ट हाउस में गुज़िश्ता रोज़ लगी ज़बरदस्त आग में 21 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि महलुकीन में 12 गैर मुल्की और 9 भारतीय शहरी शामिल हैं। पुलिस ने कहा कि केस दर्ज कर लिया गया है और तहकीकात जारी हैं। पुलिस के मुताबिक आग लगने वाली इमारत के मालिक लोकेश बजाज को हिरासत में ले लिया गया है। इस दौरान दिल्ली की वजीर आला के दफ्तर ने कहा कि उन खामियों की पूरी संजीदगी से जांच की जाएगी जो इस अफसोसनाक आतिश जदगी के वाक़े की वजह बनी और जवाबदेही तय की जाएगी। बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में कल रात ब्रह्मपुरा थाने के तहत आने वाले इलाके में एक प्राइवेट अस्पताल में ज़बरदस्त आग लगने से 3 अफराद की मौत हो गई जबकि कई लोग जख्मी हुए। मुजफ्फरपुर के जिला मजिस्ट्रेट सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि कई मरीजों की हालत नाजुक है, हुकाम सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं।
महाराष्ट्र बीजेपी के सदर रविंद्र चौहान ने 18 जून को होने वाले महाराष्ट्र कानून साज काउंसिल के इंतखाबात के लिए 17 महायुति उम्मीदवार की फहरिस्त का ऐलान किया है। मुंबई में मुश्तरक अखबारी

0: कॉन्फ्रेंस से खताब करते हुए जनाब चौहान ने यकीन जाहिर किया कि बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी इत्तेहाद की सभी 17 उम्मीदवार कामयाब रहेंगे। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज केरलम और माहे में शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनज़र ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंडमान निकोबार जजायर, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, मगरबी बंगाल के हिमालयी ज़ैली खत्ते, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तराखंड में भी बारिश होने का इम्कान है। फुटबॉल में मेज़बान भारत गोवा के मार्गो में सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर ख्वातीन की सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। मैच का वाहिद गोल सनफीदा नॉनग्रूम ने खेल के 58वें मिनट में किया। इस तरह आलमी नंबर 69 भारतीय टीम पिछले 6 साल में पहली बार ख्वातीन की सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में पहुँची है। कुश्ती में भारतीय पहलवान आज मंगोलिया में शुरू होने वाले उलान बातर ओपन दर्जाबंदी सीरीज टूर्नामेंट में अपनी मुहिम का आगाज करेंगे। खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कायम मुकाम सदर डेल्सी रोड्रिग्स के साथ बातचीत करेंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज शिलोंग में शुमाल मशरकी कौंसिल के 73वें मुकम्मल इजलास की सदारत करेंगे। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अमरीका और भारत के दरमियान तजारती समझौता चंद हफ्ते के अंदर अंदर तय पा जाएगा। भारतीय मौसमियात महकमे ने केरलम और माहे में शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनज़र ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पहली आलमी योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप आज अहमदाबाद में शुरू हो रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी शाम को वर्चुअल वसीले से इस प्रोग्राम में शामिल होंगे और फुटबॉल में गोवा में भूटान को 1 गोल से हराकर भारत ख्वातीन की सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: दोनशे 29 अंश नोमीटर्स अर्थात 1305 किलोहर्ट्सवर आणि FM बँडच्या 102 मेगाहर्ट्सवर आकाशवाणी परभणी केंद्राचं प्रसारण श्रोते हो आपण ऐकत आहात। आता वेळ झाली आहे ग्राहक केंद्रित कार्यक्रमाची। जितेंद्र घोडके सराफ हा ग्राहक केंद्रित कार्यक्रम लगेचच ऐकूयात।
2: या कार्यक्रमात तज्ञांनी व्यक्त केलेले विचार हे व्यक्तिगत आहेत। आकाशवाणी केंद्र किंवा ऍड एजन्सी या विचारांशी सहमत असतीलच असं नाही।
3: नमस्कार श्रोते हो, मी प्रियांका गोगटे। श्रोते हो, जितेंद्र घोडके सराफ अर्थात पुण्यातील सुप्रसिद्ध सराफ व्यावसायिक मेसर्स पिंपळदास सीताराम घोडके हे नाव तुमच्या परिचयाचं असेलच। यंदा ह्या पेढीचं हे 100वं वर्ष आहे। आज आपल्याबरोबर आहेत जितेंद्र घोडके सराफ पेढीचे 5व्या पेढीचे संचालक जितेंद्र घोडके सराफ अर्थात दादा। नमस्कार दादा।
4: नमस्कार
3: दादा। आता आपण मूळ विषयाकडे येऊयात, ते म्हणजे श्री गजांत लक्ष्मी अंगठी, जी केरळ सोडल्यास भारतात इतरत्र जितेंद्र घोडके सराफ पेढीशिवाय कुठेच मिळत नाही, त्याबद्दल काय सांगाल?
4: ह्या अंगठीची एक गोष्ट आहे। आमच्या पूर्वजांना या अंगठीची माहिती जवळपास 65 वर्षापूर्वी एका मल्याळी महिलेकडून मिळाली।
3: बर,
4: ही श्री गजानंत लक्ष्मी अंगठी ही संपूर्णतः मल्याळी शास्त्रावर आधारित आहे। केरळ सोडल्यास हे शास्त्र भारतात कुठेही कोणाला माहीत नाहीये। दुसरी गोष्ट अशी की ही मल्याळी लोक किंवा या व्यक्ती हे शास्त्र इतर कुठल्याही लोकांना शेअर करत नाहीत। 65 वर्षापूर्वी आमच्या पूर्वजांना ज्या एका महिलेने हे शास्त्र शेअर केलं किंवा हे शास्त्राची महती सांगितली, त्यावेळेला त्यांना एक वचन आमच्या घराण्याकडनं दिले गेलेले आहे की या अंगठीचा आम्ही व्यावसायीकरण, व्यापारीकरण यातून नफा मिळवणे यासाठी याचा वापर करणार नाही आणि हे आम्ही पाळतो, म्हणूनच त्याचं पावित्र्य टिकून आहे।
3: अच्छा, मग दादा या श्री गजानंत लक्ष्मी अंगठीची शास्त्रोक्त माहिती देऊ शकाल का?
4: हो नक्कीच, कारण ती माहिती दिल्याशिवाय लोकांना कळणार कसं की का ही अंगठी धारण करायची। प्रथम लक्षात घ्या, मी कुठलीही चुकीची माहिती तुम्हाला देणार नाहीये। श्री गजानंत लक्ष्मी अंगठी कुठल्याही शारीरिक व्याधी किंबहुना शिक्षण याच्यावरती कामाची नाहीये। आर्थिक प्राप्ती, आर्थिक धनलाभ यासाठीच फक्त ही अंगठी धारण करण्यात येते। वर्षातील 365 दिवसांपैकी फक्त 1 दिवस म्हणजे 24 तास, 24 तास पण नाही, फक्त 1 प्रहर 1 तास 45 मिनिटं हा अंगठी धारण करण्याचा मुहूर्त असतो, तो म्हणजे दीपावलीमधील लक्ष्मी पूजनाची अमावस्या। त्या दिवशी एक छोटासा विधी कशा पद्धतीने करायचा तुमचा तुम्ही घरी, याची पूर्ण माहिती आम्ही तुम्हाला अंगठी घेतल्यानंतर देत असतो। अगदी पाच मिनिटं आणि पाच मिनिटात पाच पैसेही खर्च न करता, वेगळी पूजा न मांडता, फक्त प्रॉपर आम्ही सांगितलेल्या पद्धतीप्रमाणे तो विधी करू.

0: मध्यम लहरी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच नई दिल्ली में वार्ता हो रही है। इस बातचीत में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार तथा निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की नई संभावनाएं तलाशी जाएंगी। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। इससे पहले सुश्री रोड्रिगेज ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी मुलाकात से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल्स क्षेत्रों से जुड़े कई स्थलों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं का जायजा लेना और सहयोग के अवसरों का पता लगाना है। भारत ऊर्जा और निवेश के क्षेत्रों में वेनेजुएला का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। वे 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उनकी यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिश्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। उत्तर पूर्वी परिषद का 73वां पूर्ण सत्र मेघालय के शिलंग में चल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक है। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री सुकांतो मजूमदार, गृह सचिव गोविंद मोहन और मंत्रालय के सचिव संजय जाजू उपस्थित हैं। इसके अतिरिक्त मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड तथा सिक्किम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बैठक की जानकारी दी है।
2: ये हमारा 23rd प्लेनरी मीटिंग ऑफ नॉर्थ ईस्ट होने जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है नॉर्थ ईस्ट के लिए। इसके द्वारा है बहुत सारे स्कीम के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर डिसाइड होता है। और 2014 के बाद तो नॉर्थ ईस्ट का जो भी फंड है, डेवलपमेंट फंड है, इसके द्वारा बहुत सारे योजना शुरू हो चुका है, काम हो रहा है।
1: उत्तर प्रदेश सरकार राज्य पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्रों तक निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध कराएगी। सिविल पुलिस कांस्टेबल और समकक्ष पदों के लिए भर्ती परीक्षा 8, 9 और 10 जून को प्रतिदिन 2 शिफ्टों में आयोजित की जानी है। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने इस आयोजन को योगासन के वैश्विक खेल विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। इस बीच प्रधानमंत्री ने देशवासियों से नियमित रूप से योग करने का आग्रह किया है। एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए उन्होंने कहा कि योग के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है। भारत सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। गोवा के मडगांव में कल भारत ने सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराया। फाइनल शनिवार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। शेयर बाजार दोपहर के कारोबार में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 35 अंक गिरकर 74,311 पर, जबकि निफ्टी 5 अंक फिसलकर 23,401 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित किया। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून शुरू और पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप अहमदाबाद में शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ व्यापक चर्चा की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि

0: समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ व्यापक चर्चा की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा, ऑटोमोबाइल आदि क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते तलाशे। मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने तथा वैश्विक दक्षिण के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। इससे पहले सुश्री रोड्रिगेज ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़े कई स्थलों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं का जायजा लेना तथा सहयोग के अवसरों का पता लगाना है। भारत ऊर्जा और निवेश के क्षेत्रों में वेनेजुएला का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगी। वे 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। उत्तर पूर्वी परिषद NEC का 73वां पूर्ण सत्र मेघालय के शिलंग में चल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक है। बैठक में पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे के विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। बैठक में क्षेत्रीय विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए गठित मुख्यमंत्री उच्च स्तरीय कार्यबलों द्वारा की गई प्रगति पर चर्चा प्रमुखता से शामिल है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने कहा कि इन विचार विमर्शों से राज्यों और हितधारकों के बीच समन्वित कार्रवाई को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे साझा विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री श्रीकांतो मजूमदार, गृह सचिव गोविंद मोहन और मंत्रालय के सचिव संजय जाजू उपस्थित हैं। इसके अलावा मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड तथा सिक्किम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बैठक को महत्वपूर्ण बताया।
1: ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है नॉर्थ ईस्ट के लिए। इसके द्वारा है बहुत सारे स्कीम के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर डिसाइड होता है। और 2014 के बाद तो नॉर्थ ईस्ट का जो भी फंड है, डेवलपमेंट फंड है, इसके द्वारा बहुत सारे योजना शुरू हो चुका है, काम हो रहा है।
0: उत्तर पूर्वी परिषद पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सर्वोच्च क्षेत्रीय योजना निकाय के रूप में कार्य करती है। ये क्षेत्र में समन्वित विकास को बढ़ावा देने और सहकारी संघवाद को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने कहा है कि वैश्विक व्यवधानों और आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत वैश्विक बाजार में अन्य देशों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। श्री प्रसाद ने नई दिल्ली में ग्लोबल बिजनेस रिसर्च कॉन्फ्रेंस GBRC के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने हाल ही में कई देशों के साथ सम्पन्न हुए मुक्त व्यापार समझौतों की सराहना भी की। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा आयोजित GBRC का उद्देश्य वैश्विक व्यापार से जुड़े विषयों और चुनौतियों पर शोध के लिए चर्चा का अवसर प्रदान करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in

0: और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात पुलिस ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन डेल्टा हंट की शुरुआत की है। इसके तहत पिछले 24 वर्षों में गुजरात में अवैध रूप से रह रहे 424 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 782 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ जारी है। ये अभियान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ शुरू किया गया था। गांधीनगर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले प्रत्येक घुसपैठिए का पता लगाया जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें बांग्लादेश वापस भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासियों को आश्रय, रोजगार या सहायता प्रदान करके कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
1: 6,200 से ज्यादा लोगों की तहकीकात की जा रही है, इनमें से 362 लोग अभी तक बांग्लादेशी पाए गए हैं। साथ ही जिन लोगों ने उनको रहने के लिए घर दिया होगा और जिन्होंने उनको नौकरी दी है लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे होंगे, उन पे भी एक कड़े कदम उठाने के लिए एक पूरी टीम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। गुजरात पुलिस घर घर और गांव गांव तक ये तहकीकात चालू रखेगी।
0: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए हैं। ये घटना कल रात ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में हुई। गंभीर मरीजों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। मुजफ्फरपुर के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना की जांच जारी है।
2: ICU 14 फ्लोर पर है, उसी में आग लगने की बात है, शॉर्ट सर्किट से। कुल 13 से 15 लोग भर्ती थे, लेकिन 3 लोगों की मृत्यु कंफर्म है, बाकी लोग अन्य जगह भेजा गया अलग अलग अस्पताल में इलाज के लिए। तो मृत्यु का आंकड़ा बढ़ सकता है हालांकि, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, हम लोग जांच कर रहे हैं।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मालवीय नगर अग्निकांड के घायलों से मिलने आज साकेत के निजी अस्पताल पहुंची। मुख्यमंत्री ने घायलों तथा उनके परिजनों से बातचीत की और अधिकारियों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। श्रीमती गुप्ता ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 10-10 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि घायलों के चिकित्सा खर्च की व्यवस्था की जाएगी। मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मृत्यु हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। वयोवृद्ध निर्माता और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहलानी का आज मुंबई में निधन हो गया। वे 76 वर्ष के थे। 10 जनवरी 1950 को जन्मे निहलानी ने 1982 में आई फिल्म हथकड़ी से निर्माता के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। उन्हें 1986 में आई फिल्म इल्जाम से अभिनेता गोविंदा को पहला बड़ा ब्रेक देने का श्रेय दिया जाता है। जनवरी 2015 में निहलानी को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सख्त नए दिशा निर्देश लागू किए, जिनके तहत ए रेटिंग वाली फिल्मों में भी कुछ अपशब्दों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने या हिंसा दर्शाने वाली सामग्री को सीमित करने का प्रयास किया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ आगे की सैन्य कार्रवाई से रोकने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। ये चौथी बार है जब प्रतिनिधि सभा ने ट्रंप की युद्ध संबंधी शक्तियों को सीमित करने की कोशिश की है। आलोचकों का कहना है कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को अमरीकी संसद की मंजूरी मौसम विभाग ने आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन की पुष्टि की है। मॉनसून 3 दिन देर से आया है। 1 जून से केरलम में मॉनसून के आने की संभावना थी। विभाग ने 9 जून तक केरलम और माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में तेज बारिश हो रही है। केरलम के 6 जिलों में आज कुछ जगहों पर तेज बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कई हिस्सों में

0: बारिश हो रही है और आज केरल में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के पहुंचने की संभावना है। केरल में कई जगहों पर रात से अब तक लगभग 5 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। केरल से स्मिथ एम पलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
1: मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के दौरान उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों के दौरान लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी इसी तरह की स्थिति का अनुमान व्यक्त किया है। दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर आंधी की प्रबल संभावना है। गुजरात के अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के पहले संस्करण का शुभारंभ हुआ, जो वैश्विक खेलों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को इस भव्य आयोजन में वर्चुअल रूप से शामिल होकर अपनी शुभकामनाएं देंगे। पूरे विश्व से योग प्रेमी और एथलीट प्रतियोगिता के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि चैंपियनशिप का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिताओं को योग में शामिल करना है।
2: वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: इस बीच प्रधानमंत्री ने देशवासियों से नियमित रूप से योग करने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए उन्होंने कहा कि योग के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर संतुलित, स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन जिया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और लाओस के बीच गहरे सभ्यतागत संबंध हैं और ये बौद्ध धर्म तथा रामायण की साझा विरासत में दिखाई देते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में लाओस के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री थोंग सावन फोम विहाने से भेंट की। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि इस वर्ष दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जो द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में आज गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 149 अंक गिरकर 74,197 पर, जबकि निफ्टी 34 अंक फिसलकर 30,372 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता। ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलांग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का निधन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित किया। केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून शुरू और अहमदाबाद में पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: युवक मित्रमैत्रिणींसाठी कार्यक्रम युवा आणि आपण ऐकलत आकाशवाणी मुंबई केंद्राच्या अस्मिता वाहिनीवरून. यानंतर ठीक 6 वाजता हिंदी समाचार हे हिंदीतून दिलं जाणारं बातमीपत्र आणि 6:05 इंग्रजी समाचार हे इंग्रजीतून दिलं जाणारं बातमीपत्र ही दोन्ही बातमीपत्रं आम्ही आकाशवाणी दिल्ली केंद्रावरून सहक्षेपित करीत आहोत. आणि 6:10 गीतबहार चित्रपट संगीताचा कार्यक्रम आपण ऐकू शकाल. सुरुवातीला ठीक 6 वाजता हिंदी समाचार दिल्ली केंद्रावरून.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से मुलाकात की. दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया. विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा कि वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं. उन्होंने बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था.
2: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई. चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें.
1: श्री टंडन ने कहा कि दोनों नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए. उन्होंने भारत वेनेजुएला संबंधों को और मजबूत बनाने तथा विकासशील देशों के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई. सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची थी. उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है. गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत किया है और इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है. पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है. सत्र में भाग लेने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सभी नेता मजबूत और अधिक समृद्ध पूर्वोत्तर के निर्माण के अपने संकल्प में एकजुट हैं. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए फील्ड कमांडरों के वित्तीय अधिकार 2 गुना करने को मंजूरी दे दी. रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इन उपायों से 1,25,000 करोड़ रुपए से अधिक की खरीद में सुविधा होगी. मंत्रालय ने कहा कि वित्तीय शक्तियों में वृद्धि 100% तक की गई है और कुछ मामलों में ये 2 गुने से भी अधिक है. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूअल यात्री कार का लोकार्पण किया. इसका निर्माण मारुति सुजुकी ने किया है. इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि यात्री वाहनों में फ्लेक्स फ्यूअल तकनीक की

शुरुआत केवल एक नए वाहन की शुरुआत नहीं है बल्कि भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का एक नया अध्याय है। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि फ्लेक्स फ्यूल वाहनों से प्रदूषण कम करने, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद मिलेगी। इससे देश को लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है और गैर जीवाश्म ईंधन उत्पादन क्षमता के मामले में विश्व के शीर्ष उत्पादकों में से एक बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस योजना की सफलता का मुख्य कारण यह है कि देश के नागरिकों ने ये समझ लिया है कि वे अपनी छतों पर बिजली खुद पैदा कर सकते हैं और बिजली बिल शून्य हो सकता है। इसके अलावा श्री जोशी ने आज विभिन्न मंत्रालयों और संस्थानों के अधिकारियों के साथ बैठक में सरकारी भवनों के छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली लगाने की प्रगति की भी समीक्षा की। भारत सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। गोवा के मडगांव में कल भारत ने सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराया। भारतीय टीम 6 साल बाद सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची है। फाइनल शनिवार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। 5 बार की विजेता भारतीय टीम और मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश आमने सामने होंगे। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज का दिन भारत के लिए मिला जुला रहा। पुरुष डबल्स में एमआर अर्जुन और हरिहरन की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने मलेशियाई जोड़ी एरोन ताई और कैंग खाई रिंग को कड़े मुकाबले में हराया, लेकिन पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी कड़े संघर्ष के बावजूद पराजित हो गए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ऑपरेशन डेल्टा हंट नामना विशेष अभियानम आरब्धम। अस्य अभियानस्य अन्तर्गतं गत चतुर्विंशति होरासु विंशताधिकः चतुःशतं बांग्लादेशीयाः गृहीताः तथा च द्विअशीत्यधिक सप्तशतं अधिक संदिग्ध जनानां विषये अन्वेषणं प्रचलति। दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अद्य मालवीय नगरे अग्निकाण्डेन आहतान् द्रष्टुं साकेतस्थं निजी चिकित्सालयं गतवती। सा पीडितैः तथा तेषां परिवारजनैश्च सह संवादं कृतवती। प्रत्येकं मृतकस्य परिवाराय 10 लक्ष रूप्यकाणां, गंभीररूपेण आहतानां 5 लक्ष रूप्यकाणां च अनुग्रहधनस्य घोषणा कृता। बिहार राज्यस्य मुजफ्फरपुर नगरे एकस्मिन् निजी चिकित्सालये भीषणाग्निकाण्डे 3 जनाः मृताः, अनेके च आहताः। एषा घटना गतरात्रौ ब्रह्मपुरा क्षेत्रे अभवत्। गंभीर रोगिणः उपचारार्थं अन्येषु चिकित्सालयेषु प्रविष्टाः। इति वार्ताः।
1: प्रसार भारतीच्या वेव्ज ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज ऑन एआयआर ॲपसहित 558 किलोहर्ट्झवर आकाशवाणी मुंबई केंद्राची ही आहे अस्मिता वाहिनी। संध्याकाळचे 6:30 आणि 4 सेकंद झाले आहेत। प्रसारित करीत आहोत कामगारांसाठी कार्यक्रम कामगार सभा।

0: यांचं मॉडर्न सॉन्ग ओडिया. सुरुवातीला ठीक 8:45 समाचार संध्या.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा. मुख्य समाचार. भारत और वेनेजुएला ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की. ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशने पर चर्चा की. गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने को कहा. अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे योगासन को वैश्विक खेल पहचान मिलेगी. पेट्रोल और एथेनॉल की अलग अलग मात्रा के मिश्रित ईंधन से चलने वाली देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार लॉन्च. मानसून ने दी केरलम में दस्तक. केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में अगले 7 दिन तक मूसलाधार बारिश का अनुमान. और भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लेम्बोरिया विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंची. प्रिया घंघास और विश्वनाथ सुरेश ने शीर्ष 3 में जगह बनाई. और अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की. दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया. प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई. प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमेरिका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था.
2: The discussions also.
3: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई. चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें.
2: Can enter the Venezuelan market successfully.
1: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है. पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है. बैठक में गृहमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है. उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी तथा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार का लोकार्पण किया. इसका निर्माण मारुति सुजुकी ने किया है. इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि यात्री वाहनों में फ्लेक्स फ्यूल तकनीक की शुरुआत भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का एक नया अध्याय है. श्री नितिन गडकरी ने कहा कि फ्लेक्स फ्यूल वाहनों से प्रदूषण कम करने, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद मिलेगी.
4: हमारे देश से करीब 22 से 23 लाख करोड़ रुपए हम फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट के लिए खर्चा करते हैं. हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है. अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो हमें इंपोर्ट को कम करना पड़ेगा और एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा. हमारे देश में अगर ये इंपोर्ट को कम करना है तो हमें अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल पर काफी काम करने की आवश्यकता थी, और इसलिए ये जो इंडस्ट्री है यही हमारे देश के ग्रोथ का ग्रोथ इंजिन है.
1: फ्लेक्स फ्यूल वाहन पेट्रोल और एथेनॉल के विभिन्न मिश्रणों पर चल सकते हैं. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं.

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभी।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम इस श्रृंखला में बात करेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों के बारे में।
4: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
5: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर के ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। स्टेबिलिटी के लिए अप्रत्यक्ष कर के रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है। लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
4: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। जेम से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जेम की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुँच प्रदान करता है।
6: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जेम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। एमएसएमई स्टार्टअप महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
4: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी, जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
7: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
3: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल

0: चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन शरीर और आत्मा को एकजुट करता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
1: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा, चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो। हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
0: हमारी संवाददाता ने बताया कि विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से किया गया है।
2: अहमदाबाद का एका एरिना आज से शुरू हुई पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप के साथ ही एक बड़े ऐतिहासिक बदलाव का गवाह बन रहा है। इस वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका, घाना, केन्या और मलेशिया सहित 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। मेजबान भारत ने 6 आयु श्रेणियों में मुकाबले के लिए अपनी 122 सदस्यों की टीम उतारी है। परणा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसाकुरणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में आज भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाईजिंग को शिकस्त दी। विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में जैस्मिन लंबोरिया ने महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर एक स्थान हासिल कर लिया है। वहीं प्रिया घांघस 60 किलोग्राम भार वर्ग और विश्वनाथ सुरेश 50 किलोग्राम भार वर्ग में शीर्ष तीन में जगह बनाने में सफल हुए हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली की शुरुआत की है। आयोग ने इस तकनीक का सफल उपयोग हाल ही में आयोजित प्रारंभिक सिविल सेवा परीक्षा और इस वर्ष हुए भारतीय वन सेवा परीक्षा में किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉक्टर अलका गुर्जर और डॉक्टर सतीश पूनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा ओडिशा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर भी उपचुनाव कराए जाएंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज एक नए डिजिटल पोर्टल की घोषणा की, जिससे अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य भारत के शोध तंत्र को मजबूत करना है। और बात मौसम की, दक्षिण पश्चिम मानसून आज केरलम पहुंच गया। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुदुचेरी और काराईकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और पश्चिम राजस्थान में भी कल गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज बारिश हुई। लोगों को गर्मी और उमस भरे मौसम से थोड़ी राहत मिली। आज रात भी हल्की वर्षा की संभावना है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने अगस्त सितंबर सत्र के लिए अपने इंटर्नशिप कार्यक्रम में भाग लेने के लिए महिलाओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें छात्राएं, शोधकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक शामिल हो सकते हैं जो किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक गैर शैक्षणिक संस्थान से जुड़े हों। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल wcd.intern.nic.in के माध्यम से किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और वेनेजुएला ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशने पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने को कहा। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे योगासन को वैश्विक खेल पहचान मिलेगी। पेट्रोल और एथेनॉल की अलग अलग मात्रा के मिश्रित ईंधन से चलने वाली देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार लॉन्च। और मानसून ने दी केरलम में दस्तक। केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में अगले 7 दिन तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: countrywide. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 सशक्तिकरण और प्रगति के दशक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं जनजातीय कार्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव अनंत प्रकाश पांडे और अमरीश सक्सेना।
1: आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे जनजातीय गरिमा उत्सव 2026

0: 20 आदिवासी सशक्तिकरण और समावेश का एक दशक और इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं अनंत प्रकाश पांडे जी जो कि संयुक्त सचिव हैं जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार में। पांडे जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: जैसा कि पांडे जी अभी भारत सरकार की तरफ से जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 मनाया जा रहा है, ये एक महीने तक चलने वाला उत्सव है और जिसका आयोजन जनजातीय कार्य मंत्रालय कर रहा है। ये कार्यक्रम 10 मई से शुरू हुआ और 9 जून तक चलेगा, तो 12 सालों में जनजातीय विकास के क्षेत्र में जितनी महत्वपूर्ण उपलब्धियां देश ने हासिल की हैं, जो आदिवासी और जनजाति हैं उनको गरिमा प्रदान करने के लिए, उनको सशक्तिकरण करने के लिए और जो भी समाज में उनकी भागीदारी है उसको सुनिश्चित करने के लिए इस समारोह के माध्यम से जो भी काम किए गए हैं इसकी जानकारी देने की कृपा करें।
1: जनजाति गरिमा उत्सव 2026 जैसा कि बताया हमारे वक्ता ने कि 10 मई से 9 जून तक ये लगभग एक महीने का कार्यक्रम रहा है, जिसमें हम लोगों ने अलग अलग एक एक हर हफ्ते के लिए प्रोग्राम डिजाइन किया था जो जनजाति समाज के लिए पिछले 12 वर्षों से सरकार ने कई सारे कदम उठाए हैं, तो उनके समग्र विकास की नई गाथा लिखी है पिछले 12 वर्ष में। उन्हें न केवल रोजगार का अवसर, जो बुनियादी सुविधाएं हैं जैसे स्वास्थ्य है, एक्सेस एजुकेशन के लिए है और हेल्थ एक्सेस है, इस तरह की तमाम जो बुनियादी सुविधाएं हैं, चाहे वो घर बनाना हो, चाहे पीने के पानी की सुविधा हो, तो तमाम सुविधाओं को सरकार ने अपने पूरे जोर से पिछले 12 सालों में लगे रहे हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि अगर हम लोग केवल बजट का तुलना करें कि बजट पिछले 12 सालों में कितना बढ़ गया है, तो अगर ट्राइबल जनजातीय विकास के लिए अगर ट्राइबल पे बजट जो पहले लगभग 2012-13 में 4000 करोड़ के आसपास हुआ करता था, आज वो 15000 करोड़ के आसपास हो गया है, जो कि लगभग 4 गुना वृद्धि हुई है, बहुत बड़ी वृद्धि है बजट में। और इसी प्रकार से अगर देखेंगे आपकी, जैसा मैंने बताया कि अलग अलग जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जिसमें सबसे बड़ी शिक्षा के ऊपर जो सरकार की पूरी जोर रही है कि ट्राइबल बच्चों को कैसे अच्छी क्वालिटी की शिक्षा मिल पाए, उसके तहत एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल या आवासीय विद्यालय बनाए गए हैं। लगभग 500 स्कूल आज की डेट में नए बने हैं और जिनसे लगभग 1,40,000 स्टूडेंट्स हमारे जो शेड्यूल ट्राइब के स्टूडेंट्स हैं वो इसमें पढ़ाई कर रहे हैं। पूरी तरह आवासीय सुविधा है और मुझे बताते हुए बहुत गर्व और खुशी हो रही है कि इसमें काफी सारे बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और अलग अलग जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, जैसे नीट है, जैसे हमारा IIT है एम्स में जाने के लिए, मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए, इस तरह के कई सारे जो प्रतियोगी परीक्षाओं को भी उत्तीर्ण कर रहे हैं, ये दर्शाता है कि कितनी हाई क्वालिटी की एजुकेशन इस पूरे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के माध्यम से सरकार जो है प्रतिबद्ध है अच्छी एजुकेशन पहुंचाने के लिए। इसी तरह अगर स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में भी माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने नेशनल सिकल सेल एनीमिया में इरेडिकेशन मिशन का भी 2023 में उसकी शुरुआत की है और जिससे लगभग 60 करोड़ जो है जनजाति उनका अच्छी तरह से स्क्रीनिंग हो सका है। और अगर हम सड़क, बिजली, पानी, इस तरह की जो अलग बुनियादी जो सुविधाएं हैं उसमें भी इस सरकार के तहत पीएम जनमन योजना हो, चाहे धरती आबा उत्कर्ष उत्थान योजना है, इस तरह की तमाम जो योजनाएं हैं उनके थ्रू भी बहुत सारे कन्वर्जेंस के थ्रू अलग अलग जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, बुनियादी सुविधाओं पे बहुत जोर दिया गया है। और धरती आबा में आपके 17 मंत्रालय हैं और 25 इंटरवेंशन के तहत अलग अलग इंटरवेंशन किए जा रहे हैं ताकि जनजाति समुदाय का विकास हो सके और उन्हें जो सभी महत्वपूर्ण सुविधाएं मिल सकती हैं वो सुविधाएं मिले। और पूरे 12 साल के जो तमाम समग्र विकास के लिए कार्य किए गए हैं उन सबको सेलिब्रेट करने के लिए और उसको कैसे हम लोग एक उत्सव के रूप में मना सकें कि जो सरकार ने और सरकार के ऐतिहासिक कदमों ने इस पूरे जनजातीय विकास की नई जो गाथा लिखी है उसको कैसे उत्सव को मनाया जा सके, उसके लिए मंत्रालय ने जनजातीय गौरव गरिमा उत्सव 2026 एक मंथ का हम लोग चला रहे हैं, जिसमें पहले हफ्ते में हमारे सभी श्रोता जानते हैं कि टेक्नोलॉजी आज की डेट में तकनीकी जो जितना एडवांसमेंट हो रहा है वो बहुत बड़ा योगदान आजकल कर रहा है कि हम कैसे टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें और जो सुविधाएं देना चाहते हैं ट्राइबल जनजातीय भाई बहनों को उसको किस तरह से टेक्नोलॉजी के थ्रू आसानी से पहुंचाया जा सके। और उसके तहत हमारा 10th मई से 17th

0: में तक ये टेक्नोलॉजी एज अ डेवलपमेंट ड्राइवर, मतलब विकास में कैसे ड्राइव कर सकता है टेक्नोलॉजी, इस पे एक पूरा वीक हम लोगों ने आयोजन किए तमाम प्रोग्राम।
1: पांडे जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, तो जितनी आपने योजनाएं बताई और निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाएं सरकार ने बनाई हैं, लेकिन एक मोटे तौर पे हम देखते हैं कि ज्यादातर जो जनजातीय इलाके हैं वहां पर सुविधाओं को पहुंचाना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि दूर दराज के इलाके हैं, उस तरह का ढांचा होता नहीं। तो ऐसे में प्रशासन क्या ऐसे अतिरिक्त कदम उठाता है जो सुविधाएं हैं उनको जनजातीय लोगों तक जहां वो है वहीं तक पहुंचाया जा सके?
0: पहला जो हम लोगों ने वीक मनाया वो तो टेक्नोलॉजी कैसे ड्राइव कर रहा है, और टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा इनेबलर होता है। अगर आप अपनी बात कहीं गांव तक पहुंचाना चाहते हैं, लास्ट माइल तक, आजकल बहुत जगह बहुत ट्राइबल क्षेत्रों में भी इंटरनेट का भी पहुंच हो गई है, और इसलिए तमाम ऐप के माध्यम से और इस तरह की जो वेबसाइट पोर्टल के माध्यम से भी बहुत सारी हम लोग योजनाएं अवेयरनेस के तौर पे पहुंचा रहे हैं। लेकिन अगर हम एक्चुअल योजना, जिसे आपने कहा बहुत सही बात आपने बताई कि ट्राइबल हमारे जो भाई बहन साथी हैं वो बहुत सुदूर और डिफिकल्ट एरियाज में रहते हैं, और उन तक पहुंचना एक अपने आप में चुनौती रहती है, और इस चुनौती को ओवरकम करने के लिए सरकार ने, आप देखिए तो पिछले ऑलमोस्ट 10 सालों में लगातार जन भागीदारी अभियान चलाते रहे हैं, और इसी तहत एक बहुत बड़ा जन भागीदारी अभियान जो हमारा इस पूरे जनजाति गरिमा उत्सव का जो दूसरा हफ्ता था, जिसमें 18 से 25 मई इस दौरान हमने सबसे दूर सबसे पहले नाम की एक पहल शुरू की, जिसमें जन भागीदारी के थ्रू जितने सर्विसेज थी वो उनके डोर स्टेप, जिनके पास तक कैसे सारी पहुंच सके, इसके लिए लगभग 76,000 जो हमारे गांव थे 600 डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे 57,000 कैंप्स किए गए, और लगभग 90,00,000 ट्राइबल जो हमारे भाई बहन शामिल उसमें हुए। और कुछ आंकड़े आप सभी श्रोताओं के लिए बताना चाहूंगा, उसमें लगभग 13,000 लोगों की जन सुनवाई हुई, जिसमें उन्होंने अपनी समस्याएं अपनी मांग ट्राइबल समुदाय के लोगों ने रखी, और 19,000 आदि सेवा केंद्र, जो कि एक तरह से एक वन स्टॉप सॉल्यूशन के तौर पर हम लोग मंत्रालय उसको प्रस्तुत कर रहा है, कि एक ऐसी संस्थागत व्यवस्था गांव के लेवल पे रहे, जहां पे कुछ बिल्डिंग को चिन्हित करके उसे आदि सेवा केंद्र के तौर पे चिन्हित किया गया, और वहां पे जो ट्राइबल से रिलेटेड और जो ग्राम विकास से रिलेटेड मंत्रालय हैं, अलग अलग सोशल डेवलपमेंट के मंत्रालय हैं, उनके डिपार्टमेंट्स के लोग वहां जाएंगे और लोगों के बीच में उनकी समस्याएं सुनेंगे, स्पेशली ट्राइबल लोगों की। तो ये आदि सेवा के माध्यम से, इसी तरह अगर आप देखोगे इन सारे कैंप्स में बहुत सारे जो स्कीम्स का सैचुरेशन का भी माध्यम किया गया, तो अगर आप आधार कार्ड एनरोलमेंट की बात करेंगे तो लगभग 2.5 लाख लोगों को आधार कार्ड में एनरोल किया गया केवल इस एक हफ्ते के दौरान की मैं प्रगति बता रहा हूँ। आयुष्मान भारत कार्ड लगभग 2.25 लाख लोगों को दिया गया, और इसी तरह हेल्थ स्क्रीनिंग जो है टीबी और सिकल सेल के हेल्थ स्क्रीनिंग लगभग 1.35 लाख लोगों की गई। तो इस तरह के अभियान, जो आपका प्रश्न था डिफिकल्ट एरिया में कैसे मंत्रालय एक्सेस कर पाता है, तो मंत्रालय स्टेट गवर्नमेंट्स के जो राज्य सरकारों के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बीडीओ लेवल पे जो गांव के लेवल के स्तर पे अधिकारी और कर्मचारी हैं, उन सबके साथ कंधे से कंधा मिला के इस तरह के अभियान लगातार समय समय पे चला के वो हमारे पास ट्राइबल ना आए, ट्राइबल को ज्यादा दूर ना जाना पड़े, सरकार उनके द्वारा एक तरह से जाती है और वहां पे जाके योजनाओं के बारे में बताती है, और कुछ योजनाओं को जो लाभ मिल सकता है उसको कैंप के माध्यम से वहाँ भी लगातार देने का।
1: जी, यहाँ पे एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा पांडे जी, सरकार की तरफ से जैसा आपने बताया बहुत प्रयास कर रहे हैं, जागरूकता फैलाना सबसे एक महत्वपूर्ण काम है, इन प्रयासों की सफलता तभी है जब जिसके लिए काम किया जा रहा है उनकी भी भागीदारी हो, जिसको हम सामुदायिक भागीदारी की बात कहें, तो सामुदायिक भागीदारी को और बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से क्या किया गया है?
0: सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट, जैसे हम लोगों ने पहले बताया कि अगर हम पिछले वर्ष की बात करें तो पिछले वर्ष एक बहुत बड़ा अभियान आदि कर्मयोगी अभियान के रूप में उसको चलाया गया था, और माननीय प्रधानमंत्री का जो विकसित भारत का सपना है उस संकल्प के लिए बिना समुदाय के शामिल हुए इस पूरे संकल्प को पूर्ण कर पाना आसान नहीं। तो उसी के तहत आदि कर्मयोगी अभियान में हम लोगों ने लगभग 20 लाख ट्राइबल लोगों तक पहुंच बनाई, जिसमें अलग अलग विभाग अपने जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उनकी एक ट्रेनिंग कम अवेयरनेस और सेंसिटिविटी की गई ताकि मास्टर ट्रेनर्स बने और मास्टर ट्रेनर्स के साथ फिर मिलके ग्राम स्तर पर जो विलेज डेवलपमेंट एक्शन प्लान बनाया गया, विलेज विजन डॉक्यूमेंट

0: बनाया गया गांव वालों के साथ बैठ के, कि ट्राइबल गांव के लोग हैं उनके साथ मिल के कैसे कोई प्लानिंग की जा सकती है, उनसे चर्चा करके कैसे प्लानिंग की जा सकती है, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का, किसी भी समुदाय का भागीदारी सुनिश्चित करने का सबसे बेहतरीन जो तरीका वो हो सकता है कि उसके डिसीजन मेकिंग में, उसके विकास के जो उसमें वो कैसे प्लान हो उसके गांव का विकास, उसमें उसकी भागीदारी सुनिश्चित किया। तो इसके लिए लगभग 56,000 गांवों तक हम लोग पिछले 6 महीने में पहुंचे, और उस 56,000 गांवों में गांव वालों के साथ मिल के जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, कुछ हम लोगों ने आदि सेवा केंद्र भी जो मैंने बताया था जैसे उसमें आइडेंटिफाई हुए थे, और आदि सहयोगी और आदि साथी भी चिन्हित किए गए थे, कुछ वॉलंटियर्स और कुछ जो ग्राम स्तर पे राज्य सरकारों के अधीन जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनके साथ मिलके और गांव वालों के साथ मिलके प्लानिंग भी की गई, कुछ बढ़िया डॉक्यूमेंट्स भी बने हैं, उस पर भी काम हो रहा है। तो इस तरह से लगातार प्रयास ये रहता है कि जब तक गांव के जो असली जो वहां रहते हैं, जब तक उनकी बात सुन के उन समुदाय क्या चाहता है, वो चीज बिना जाने अगर हम प्लानिंग करते रहे यहाँ दिल्ली से या किसी स्टेट हेडक्वार्टर से, तो वो कामयाब नहीं होता। लेकिन मंत्रालय ने पूरा इस बार सीरियसली इस मामले में प्रयास किया है कि हम ग्राम स्तर पर कैसे लोगों को जोड़।
1: जी, यहाँ पर मैं और एक बात आपसे पूछना चाहूंगा पांडे जी, कि जब हम उद्यमशीलता की बात करते हैं, एक एंटरप्रेन्योरशिप, एक उद्यमशीलता को विकसित करना भी जरूरी है, तो इस क्षेत्र में खासतौर पे क्या विशेष प्रयास किए गए हैं?
0: जनजाति की अवस्था अगर देखी जाए तो सरकार का जो पहला फोकस रहा वो ये रहा कि कैसे इनको बेसिक सुविधाओं से अच्छी तरह से लैस किया जाए। अच्छी तरह से लैस करने का मतलब कि बेसिक सुविधाएं कैसे पहुंचाई जा सके, जैसे सड़क है, बिजली है, पानी है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है। तो मैंने जैसे पहले बताया कि इन सारे क्षेत्रों में धरती आबा अभियान हो, चाहे पीएम जनमन हो, चाहे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है, स्कॉलरशिप है जो लगभग हम लोग 20 लाख पोस्ट मैट्रिक और 10 लाख प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप देते हैं शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट को, ताकि वो स्कूल ड्रॉप आउट ना हो सके उनको पूरी तरह से। तो इस तरह की जो बेसिक सुविधाएं हमने मतलब सरकार ने अपनी तमाम योजनाओं तक पहुंचाई है, पहुंचा रही। अब जो बहुत महत्वपूर्ण चरण है वो ये है कि अब इनको कैसे ग्रेजुएट, मतलब इनको कैसे दूसरे लेवल इनकम कैसे जनरेट की जा सके, ताकि अपने पैरों पर खड़े हो सके और अब पूरे देश कि जो विकसित भारत 2047 में अपना योगदान दे सके। तो उसके लिए जो दो बहुत महत्वपूर्ण मतलब एजेंडा है सरकार के, उस पे एक तो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स कैसे डेवलप की जाए, तो उसके लिए हम लोग इंस्टीट्यूट स्किल के साथ जॉइंटली अपनी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स की ट्रेनिंग कई जगह जितने हमारे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल वहां पे कर रहे हैं। कुछ हम लोगों ने CSR के माध्यम से, क्योंकि सरकार की भी ये सोच रहती है कि प्राइवेट पार्टनरशिप भी की जाए, पब्लिक सेक्टर को भी लाया जाए, ताकि समाज के हर वर्ग को जोड़ा जा सके, तो CSR के माध्यम से भी हम लोग बूट कैंप्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स की ट्रेनिंग दी जा सके।
1: पांडे जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी जनजातीय गरिमा उत्सव के बारे में और आदिवासियों के सशक्तिकरण और समावेशन के लिए सरकार जिस तरह से प्रयास कर रही है और एक पूरे महीने तक जिस तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा, वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। आपका इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 सशक्तिकरण और प्रगति के दशक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे जनजातीय कार्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव अनंत प्रकाश पांडे और अमरीश सक्सेना। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। Rewind.

0: नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच
1: हिंदी और भोजपुरी में अपनी भावपूर्ण प्रस्तुतियों के लिए विशेष पहचान प्राप्त है। आपके संगीत में मिथिला की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं की गहरी छाप दिखाई देती है, साथ ही उसमें आधुनिक श्रोताओं को आकर्षित करने वाली नवीनता भी।

0: विद्यमान है। सौम्या मिश्रा देश भर के अनेक प्रतिष्ठित सांस्कृतिक समारोहों और मंचीय कार्यक्रमों में अपनी मधुर एवं भावपूर्ण गायकी से श्रोताओं का मन मोहती रहती हैं। आइए सुनते हैं आकाशवाणी की ए श्रेणी की कलाकार सौम्या मिश्रा की स्वरबद्ध प्रस्तुति में मनमोहक मैथिली लोकगीत। आज के कार्यक्रम में संगत करता है तबले पर हरिभूषण झा, ऑक्टोपैड पर ललित, ढोलक पर अमन कृष्ण और सिंथेसाइजर पर शशिभूषण झा। सौम्या मिश्रा अपने कार्यक्रम का आरंभ कर रही हैं महाकवि विद्यापति की एक रचना चानन भेल विषम सर रे से।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ रीजनल फोक एंड लाइट म्यूजिक वी प्रेजेंट मैथिली फोक सॉन्ग बाय सौम्या मिश्रा एंड ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। सौम्या मिश्रा हेल्स फ्रॉम मधुबनी बिहार। She is a gifted folk vocalist, acclaimed for her soulful renditions in Maithili, Hindi and Bhojpuri. Her music reflects a deep connection to the cultural traditions of Mithila, while carrying a freshness that appeals to contemporary audiences. Sowmya Mishra has performed at numerous prestigious cultural festivals and stage programs across the country, enchanting listeners with her melodious voice and heartfelt expression. In today's program, the accompanists are Haribhushan Jha on tabla, Lalit Kumar on octopad, Aman Krishan on dholak, and Shashibhushan Jha on keyboard. She begins her rendition with a composition titled Chanan Bhel.

0: अभी आप सुन रहे थे सौम्या मिश्रा से महाकवि विद्यापति की एक रचना चानन भेल विषम सर रे। आइए अब सुनते हैं एक लगनी गीत जिसके बोल हैं एकता हम बारी कुमारी।
1: We just heard a composition titled Chanan Bhel. Continuing this program, she now presents a composition titled Ekta Hum Bari Kumari.

0: आप सुन रहे हैं सौम्या मिश्रा द्वारा प्रस्तुत मैथिली लोकगीत। कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति है एक चैती जिसके बोल है कोहके बारी कोयलिया हो रामा।
1: That was a मैथिली composition performed by सौम्या मिश्रा। We will now listen a composition titled कोहके बारी कोयलिया हो रामा।

0: अभी आप सुन रहे थे चैती गीत। कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति है एक पूर्वी जिसके बोल हैं, बाट हेरी दिन काटी नोर बहैया।
1: That was a मैथिली composition performed by सौम्या मिश्रा। She concludes her rendition with a composition titled बाटे हेरी दिन काटी नोर बहैया।

0: इसी के साथ आज के कार्यक्रम में मैथिली लोकगीत की ये प्रस्तुति अब यहीं संपन्न होती है। इस कार्यक्रम में तबले पर संगत की हरिभूषण झा ने, ऑक्टोपैड पर थे ललित कुमार, ढोलक पर थे अमन कृष्ण और सिंथेसाइजर पर साथ दिया था शशिभूषण झा ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया। कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे आकाशवाणी जयपुर ओडिशा की प्रस्तुति।
1: With that, she concludes her rendition of Maithili folk compositions. This part of the program was recorded in the studio of Akashwani Delhi. Continuing the broadcast from Akashwani Delhi, now we will listen to the presentation of Akashwani Jaipur, Odisha.

क्षेत्रीय लोक और सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूं। मैं अमीना हुसैन। नमस्कार। आज हम आपको सुनवा रहे हैं ओडिशा प्रदेश के कुछ मधुर और मन मोह लेने वाले आधुनिक गीत, जिनको प्रस्तुत किया है आकाशवाणी जयपुर केंद्र ओडिशा। इन गानों को सुरों में सजाकर आप तक पहुंचाया है आकाशवाणी जयपुर केंद्र ओडिशा के सुप्रसिद्ध टॉप ग्रेड म्यूजिक कंपोजर श्री विजय कुमार सामंतराय। श्री विजय कुमार सामंतराय माता श्रीमती स्नेहलता सामंतराय और पिता श्री चंद्रशेखर सामंतराय के सुपुत्र हैं। आपने गुरु श्री हेमंत कुमार त्रिपाठी के तत्वावधान में बचपन से ही बैला यानी कि वायोलिन की शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया था। सन 1994 में आपने आकाशवाणी जयपुर केंद्र में स्टाफ आर्टिस्ट के तौर पर योगदान दिया। उसके बाद से आपने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक सीढ़ियों को पार करते हुए सन 2023 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय, आकाशवाणी और दूरदर्शन

की तरफ से टॉप ग्रेड म्यूजिक कंपोजर का मान्यता हासिल किया। आपने सन 2015 में आकाशवाणी संगीत सम्मेलन के अखिल भारतीय संगीत कार्यक्रम में बेला वादक के तौर पर संगत भी किया है। आपने आकाशवाणी के विभिन्न कार्यक्रम में संगीत देकर 20 से भी अधिक नेशनल और इंटरनेशनल एनुअल अवार्ड भी प्राप्त किया है। तो लीजिए, आज हम आपको सुनवा रहे हैं विजय कुमार सामंतराय के बनाए हुए सुरों से सजे कुछ आधुनिक ओडिया गीत। विभिन्न वाद्य यंत्र पर संगत कर रहे हैं तबला पर सुशांत कुमार अधिकारी, बांसुरी पर वी कुर्मनाधन, वायोलिन पर हिमांशु भूषण शतपथी, मैंडोलिन पर के ईश्वर सराफ, गिटार पर इंदर सिंह, ऑर्गन पर के संतोष कुमार राव, सैक्सोफोन पर हैं राहुल देव सामंतराय, ऑक्टोपैड पर बी जगदीश कुमार, ढोलक पर हैं उमेश कुमार पाणिग्राही और आकाश कुमार सामंतराय, स्पेशियल इफेक्ट दिया है गुप्तेश्वर पाणिग्राही। तो प्रस्तुत है पहला गाना जिसका बोल है, मन हृदय जेते सबु कथा तम आगे प्रिय कही दिली। मतलब है, अपने दिल की हर बात लो आज कह दिया हमने आपके सामने। ये बोल लिखा है गीतकार रंजन कुमार बेहरा और मधुर आवाज है प्रीति पंडा की।

अभी सुनते हैं जिंदगी की कुछ भूल भुलैया अनजान राहों की बात। ये बोल लिखा है गीतकार बसंत कुमार दास, आवाज है सनातन पुरोहित दास की। पांथ शाड़ार रातिटीए पाई घड़िए पड़ुछी उणा, हेले मधुशाला अजणा कोणरे सरुनाही बिका किणा। जीवन हेउ केते बाट बणा, हेउ केते बाट बणा।

अभी सुनते हैं गीतकार किशोर चंद्र नंद के लिखे हुए गीत आवेगरे के ही कही थी बा कथा मन तुली ने किया अंके। इस गाने को आवाज दिया है प्रीति पंडा। किसी ने जो दिल से कह दिया कुछ बातें, आज ये मन उन्हें ही क्यों ढूंढे।

कार्यक्रम के अगले गाने को अपने मन मोह लेने वाले आवाज से प्रस्तुत कर रहे हैं सनातन पुरोहित दास। गीतकार हैं गौर पटनायक। बोल है नाटकर मिछ अभिनय छड़ा आउ किछी जाने नहीं, मतलब है जीवन के रंगमंच में मैं हूं एक अभिनेता, झूठा अभिनय के सिवाय और कुछ भी तो नहीं आता।

में प्रस्तुत है एक युगल गीत, गीतकार रंजन कुमार बेहरा, आवाज है सनातन पुरोहित दास और प्रीति पंडा की। बोल है, प्रथम देखारे तुम्हें मनकल चोरी, अल्प कथारे आहा लागिगला टोरी, पहले ही मुलाकात में मन चुरा लिया, थोड़े ही बातों में हाय दिल लगा लिया।

अभी आप सुन रहे थे क्षेत्रीय लोक और सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ ओडिया आधुनिक गीत, जिनको प्रस्तुत किया था आकाशवाणी जयपुर केंद्र उड़ीसा में और प्रसारण किया गया आकाशवाणी दिल्ली से। विभिन्न वाद्य यंत्र पर संगत कर रहे थे तबला पर सुशांत कुमार अधिकारी, बांसुरी पर वी कुर्मनाधन, वायोलिन पर हिमांशु भूषण शतपथी, मैंडोलिन पर के ईश्वर सराफ, गिटार पर इंदर सिंह, ऑर्गन पर के संतोष कुमार राव, सैक्सोफोन पर थे राहुल देव सामंतराय, ऑक्टोपेड पर बी जगदीश कुमार, ढोलक पर उमेश कुमार पाणिग्राही और आकाश कुमार सामंतराय, स्पेशियल इफेक्ट दिया था गुप्तेश्वर पाणिग्राही। इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग में सहायता किया था रंजन कुमार बेहरा, यांत्रिक सहायता किए थे शरद कुमार पाढ़ी और एन योगेंद्र। इसी के साथ क्षेत्रीय लोक और सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम अब समाप्त होता है। विदा चाहती हूँ मैं अमीना हुसैन, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमेरिका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई।

0: का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
1: कैन एंटर द वेनेजुएलन मार्केट सक्सेसफुली।
2: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृह मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृह मंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल की पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
3: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा, चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो। हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
2: भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉ. अलका गुर्जर और डॉ. सतीश पुनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा उड़ीसा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर उपचुनाव भी कराए जाएंगे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज मिजोरम के चंफाई जिले में 9 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई म्यांमा से अवैध रूप से लाई जा रही सुपारी की तस्करी और 970 करोड़ रुपए से अधिक की आपराधिक आय से जुड़े धन शोधन के मामले में की गई। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज केरलम पहुंच गया है। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुद्दुचेरी और कराईकल में भी कल तेज बारिश होने की संभावना है। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और पश्चिम राजस्थान में भी कल गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में जैस्मीन लंबोरिया ने महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर एक स्थान हासिल कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। Prime Minister Narendra Modi today held talks with acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi. The two leaders reviewed the full spectrum of bilateral relations and explored new avenues of cooperation in energy, trade, investment, healthcare and automobiles, among others. In a social media post, Mr. Modi said they had extensive discussions on expanding cooperation in energy, critical minerals, technology, agriculture, health and people-to-people ties. He said that as a valued partner in Latin America, India's close cooperation with Venezuela holds immense importance for the Global South. He said both nations will continue to work together for the mutual benefit of the people of the two countries. Addressing media after the talks, Secretary East Rudhrendra Tandon said Venezuela possesses one of the largest oil reserves in the world. He said today's discussions between the two sides focused on forging an energy partnership between the two countries, as Venezuelan energy sector is undergoing a fundamental transformation. Union Home Minister Amit Shah today said